0: रंग बहार रंग बहार
1: वज संगे उपहारे उपहार बम्पर मा यामाहा रेजियर
0: वज पेन्सले घर रंगाउनु होस् र लकी ड्र मार्फत यामाहा रेजियर 125 स्कूटर बम्पर उपहार जित्ने मौका पाउनु होस्
1: साथै 65 इन्च को स्मार्ट टीवी रेफ्रिजरेटर वाशिंग मशीन लगायत 350 भन्दा बढी आकर्षक उपहारहरू पनि
2: घर रंगाओ खुशी बनाओ उपहार जित्ने अवसर पाओ
0: वज पेन्सले

सुबड़ अवसर सुबड़ अवसर नर्भिक अस्पताल तथा काठमाडौं डायबिटीज तथा थायराइड सेन्टर का वरिष्ठ इंडोक्राइनोलॉजिस्ट डाक्टर किरण आचार्य अबदेखि प्रत्येक महीना को तेस्रो शनिवार एस जेस फार्मेसी